0: चेहरे पर मेरे, तुम्हारा नूर है जो मन रहा है चेहरे पर, वगरना कौन मुझे देखता अंधेरे में।
1: நல்ல ஃபேம் இளமை புதுமை இனிமை.